सेव करी इन्हीं की पावत, आन की सेव सुहात ना जी को, आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सब फीको। सेव करी इन्हीं की पावत,

सदा सच्चिदानंद सर्वं पन्नासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी परं परम परमेश्वरं पुष्पालं सदा सर्वदा।

0: अनुपूते अंग अपाया पंग गत मित पार गुणगने उदार
1: गुणगान प्रणाम निर्विघ्न काम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड
0: आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा परनांडे अंडड बाडे
1: राजी शांत प्रसाद
0: गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे
1: हरिम करियम ने नामे अकामे प्रचंग प्रयात चंद
0: चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
1: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पर्ती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने
1: चाजी चंद
0: ना सत्रे ना मित्रे ना परमंग ना पित्रे न चित्रे न मित्रे परे है पवित्र के आशित देशे के आपिज पीसे के आगज कर्म के आपिज परम
1: के
0: राजंग प्रवाह के धर्मंग तुजा है के असुक परने के सर्वा अपर्ण
1: के जतन करती है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुपम अनुपे
0: के आदि अदेव के आप अपि वै के चित्रंग बहीन के

0: त्रमान्य के सर्वत्र धान्य के सर्वत्र गाँव ने के सर्वत्र पावन
1: के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे
0: के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु
1: के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र घंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सोखे के सर्वत्र भोखे
0: के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पिसे
1: के सर्वत्र मानिए सदैव प्रदानिए के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
0: के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
1: के सर्वं कलि में के परमं फहि में के आकल अलामे के साहिब कलामे
0: के हुस्नल वजू है तमाम रजू है हमें सलसला में सलीक मुमदामे।

निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रमुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है समस्तुल सलाम है सदैव काम है निर्बाध।

0: सर्वंग हंता सर्वंग कंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता
1: सर्वंग हंता सर्वंग कंता सर्वंग प्राणिंग सर्वंग त्राणिंग
0: सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता नमो नरक नासे सदावंग प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूते अनंगी अनाम में त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
2: न पुत्रे न सतरे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते
0: निरसाकं सरी कह अमितो अमीक है सदैव प्रवाह है अजय है अजा है
2: भगवती शांत परिषद
0: के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्त कलाम है
2: साहिब दिमाग है के वसन चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है
0: के रुचि ते हंद है के राज के रहिंद है करीमल कमाल है के हुसन अल जमाल है
2: आज है गरीब अल नवाज है हरीफल स्पन है रसल फकन है
0: कलंकंग प्रनास है समस्त निवास है अगजुल गनीम है रजाइक रहीम है
2: समस्त जवा है के साहिब करा है के नरकं प्रनास है वैसल निवास है
0: के सर्वुल गवन है हमें शुल रवन है तमाम उल्तमीज है समस्त अजीज है
2: परम परम इस है समस्त लेडिस है दिसल अलेख है मिसल अपेख है
0: जमीनुल जमा है अमीकुल अमा है करीमुल कमाल है के यूरप जमाल है
2: अजलन प्रकाश है के मितो सुवास है के अजब स्वरूप है के मितो प्रभुत है
0: के अमतो पिसा है के आत्म प्रवाह है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है।

0: सरोवर है।
1: तृत कै तृण है जग कै करण है मन मान्य है जग जान्य है।
0: सर्वस्य
1: कर्णाकर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जग

0: अमृत ईश्वर है, परमेश्वर है, अकर्ता कृत है, अमृता अमृत है,
1: अजब्बा कृत है, अमृता अमृत है, नायक है, खल खायक है,
0: विश्वम्बर है, करुणालय है, नायक है, सर्पायिक है,
1: पापंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जपन है,
0: अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है,
1: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, चंद प्रयाग चंद,
0: नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्री, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्र,
1: नमो अंधकार, नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे,
0: नमो रासंग तामसंग सात रूपे, नमो परम तत्ंग अतंतंग स्वरूपे,
1: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने,
0: नमो जुद जुदे, नमो ज्ञान ज्ञानी, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने,
1: नमो कल्याण कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे।

0: नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगजुल अनामे समस्तुल निवासे
1: काम बपुते समस्त सर्वे को कर्म परनासे सुधर्म बपुते
0: सदा सच्चिदानंद सतरंग परनासी करी मल को निंदा समस्तुल निवासी।

0: परलोक गवायो।
1: बास कियो बिख्यान सुबैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो।
0: साच कहो सुन लियो सबे जन प्रेम कियो तन ही प्रपायो।
1: काहुल पाहन पूत तरयो सिर काहुल।

0: अपना जान करो प्रित पारा।
1: हमरे दुष्ट सबे तुम काब हु, आप हाथ दे मोहि बचाव हु।
0: सुखे बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा।
1: मोर शानिज कर दे करिये, सब बैरन को आर संगरिये।
0: और न होए हमारी ऐसा, तोर भजन के रहे प्यासा।
1: तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ।
0: सेवक सिख हमारे कार्य, चुन चुन सतर हमारे।

0: तरे तत्काल
1: कृपा दृष्ट तन जाय न हरिहु ताकि ताप तन कमो हरिहु
0: रेद सहित कर्म सब होए दोसा सब सके न कोई
1: एक बार जिन तुम्हें सभारा काल फास्ते तहे उबारा
0: नाम तिहारो कह।

0: रंग जम्यो सारंग बाणी,
1: कहे नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी।
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु वाचो होर कच्ची बाणी।
1: कहि दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख विखाणी।
0: हर हर नित करे रसना, कहा कछु ना जानी।
1: जित जिन का हिर लिया माया, बोलन पैर वाणी।
0: कहे नानक सतगुरु वाचो होर कच्ची बाणी।
1: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द से ती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ।
0: आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बजाए,
1: कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ।
0: शिव शक्त आप पाए के करता आपे हुकम बरताए,
1: हुकम बरताए आप वेखे गुरमुख से बजाए।
0: जोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए,
1: गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे किस स्यों लिबलाए।
0: कहे नानक आप करता आपे हुकम बजाए,
1: सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी।
0: तत्ते सार न जानी गुरु वाचो तत्ते सार न जानी,
1: तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन मिहानी।
0: गुरु कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोले अमृत वाणी।
1: कहे नानक सो तत पाए जिसनु अणदिन हर लिव लागे जागत रहन मिहानी।
0: माता के उदर में प्रित पाल करे सो क्यों मनो विसारी
1: है, मनो क्यों विसारी है एवड दा ताज अग्न में आहार पहुँचावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए। जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया,
0: माया अगन सबे को जेही करते तेल रचाया।
1: जात इस पाना ता जम्मेया परिवार भला पाया,
0: लगी कृष्णा माया अमर बरताया।
1: ये माया जित हर विसरै मोपजे पाओ दूजा लाया।
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिब लागी तिन बिचे माया पाया।
1: हर आप मुल्क है मुल ना पाया जाए,
0: मुल ना पाया जाए किसे मिटो रहे लोक मिल लाए।
1: ऐसा सतगुरु जी मिले तिस नौ सिर सौंपिए।

0: मन बंजारा सतगुर दे रास जानी।
1: हर हर नित जपे जी हो लाहा खट्यो दिहाड़ी कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बनजारा। प्यास न जाए होरत कीते अज चर हरस पल्ले न पाए
0: हरस पाए पल्ले पिए हरस बोन तृष्णा लागे आए।
1: एहो हरस कर्मी पाइए सतगुर मलै जस आए
0: आए।
1: ए शरीरा मेरे आ हर तू मैं जोत रखी हिता तू जग में आया
0: जग में आया।
1: हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी तातू जग में आया।
0: हर मंगल गाओ सके ग्रह मंदिर बनया
1: हर गाओ मंगल नित सखी है शोक दुख ना व्यापे
0: गुर चरण लागे दिन सपगे अपना फिर जपे
1: अनहत बाणी गुरु

0: हर एक है हर बिन अवर न कोई।
1: कहे नानक नितरां से सतगुर मिलिया
0: देव दे। ए सर्वणो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए। जत सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी। कहे नानक अमृत नाम सुन हो पवित्र हो वो साचे सुनने नो पठाए।
1: बजाया
0: बजाया बाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखा।

जय जयकार करे सब कोई, गुरपुरे की बड़ियाई, आकी कीमत कहीं न जाई। हों कुरबान जाए तेरे नाम है, जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे। सो जस तेरा गावै रहाओ, तू भारो स्वामी मेरा, संतां परवासा तेरा, नानक प्रभ सरनाई। मुख निंदक कै शाई,

तरे कुटुंब संग लोग कुल सुवाया। मन तन पै संतोख पूरन प्रभ पाया। तरे कुटुंब संग लोग कुल सुभाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक दया करणिंग दुख हरणिंग उचरिंग नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान है, नानक लिपत न माया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई, रखंदड़ो प्रभ आप। जिन अपाई मेदनी, नानक सो प्रभ जाप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम।

जपो सतनाम सतनाम सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी जपो सतनाम सत

खंडा वरपंडा अंडद जेर तुजा खानी से तजा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु उपाय के संभाले सबना जिन करते करुणा किया चिंता भी करुणीता सुकर्ता चिंता करे जिन उपाय जागते ज्वारी स्वास्थ्य।

बंधन काट करी मन निर्मल, पूर्ण पुरख विधाता रहाउ। नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न बिरथी जा

बेदन सतगुर आप गवाई, सिख संत सब सराशे होए, हर हर नाम ते आई रहाउ। जो मंगह सो लेवह, प्रभ अपने संतां देवै। हर गोबिंद प्रभ राखिया, जन नानक साच सुभाखिया। सोरठ महला पंजवां, सोई कराए जो तुद पावै, मोहे सियान पकशु न आवै। हम बारक तौ शरणाई, प्रभ आपे पैज रखाई। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रत पा।

जी जंत सब हाथ तिसह कै सो प्रभ अंतर जामी रहाउ। करतब सब सवारी प्रभ अपना बिरद समारी, पतत पावन प्रभ नामा जन नानक साधु कुर्बाना।

मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला रदा सुनी भगत अपने की सब जी पया कृपाला रहाऊ प्रभ करण कारण समराथा हर सिमरत सब दुख लाता अपने दास की सुनी बेनंती सब नानक सुख सवंती सोरठ महला पंजवा अपना गुरु ते आए मिल कुशल सेती घर आए नाम की वडियाई तिस कीमत कहन ना जाई संत हो हर हर हर आराध हो हर आराध सबो किश पाई है कारज सगले साध हो रहाउ प्रेम भगत प्रभ लागी सो पाए जिस वड भागी।

पन्ना आनंद कर है नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संत हो सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण पर।

प्रभु राखी पै जो हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावै, बिरथी आस नाम जाई रहाउ। कृपा करे जिस प्राण पद दाता, सोई संत गुण गावै, प्रेम भगत ताका मन लीना, पार ब्रह्मन पावै। आठ पहर हर का जस रवना, बिखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरे करत, संत साध पए साथी। कर गै लीने सर्बस दीने, आप आप मिलाया, कहो नानक सर्ब थोक पूरन, पूरा सतगुर पाया। सोरठ महला पंजवा, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन शारी, इस आगै को न टिकै विकारी, गुरपूरे ए गल सारी। हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिस की गत होवै, उधरै सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सपार ब्रह्म नदरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी, बख्श अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाप सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरले के नहीं जाती रहाउ। गुरबाणी गावै पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम त्याया, पूर्व लिखिया पाया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरा आराधे, कारज सगले साधे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे। संत हो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाउ।

त्यों ज्ञानी नाम कमावै। गुरपूरे ते पावै जन नानक नाम ते आवै। सोरठ महला पंजवा सुख शांत कर आया, निंद कै मुख छाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सबाया। संतो हो साचे की वडियाई, जिन अचरज सोभ बनाई रहाउ। बोले साहिब कै भाणै, दास बाणी ब्रह्म वखाणै। नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई। सोरठ महला।

नानक प्रभु शरणाई मुख नंद कैशाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछ आनंद प्रभ कीता। परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कत हो नाही। सच साहिब स्यों मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला।

निरय कंठ लाए प्रभ राखय सतगुर की सच साखय। गुर पूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास कौ सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख शांत फिर आए नानक प्रभ शरण आए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी शरणी पाई है। दर्शन पेट तो होते आनंदा दुख गया हर गाई है।

रहाउ। तिसह परापद जिस तुर लिखया सोई पूर्ण पाई, नानक की बेनंती प्राब जी नाम रहा लेवलाई। सोरठ महला पंजवा, करण करावन हर अंतर जामी, जन अपने की राख जय जयकार होत जग पीतर। शब्द गुरु रास चाख, प्रभ जी तेरी ओट गुसाई, तू सम्राट शरण का दाता, आठ पैर तुम त्याई रहाउ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा, तिस अंदेसा नाही, सदगुर चरण लगे पाओ मिटया, हर गुण गाए मन माही। सोख सहज आनंद कनेरे, सतगुर दिया दिलासा, जिन घर आए शोभा छेती, पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी, पूर्ण प्रभ के कामा, गुर चरणी लाग तरियो भव सागर। जाप नानक हार हर नामा, सोरठ महला पंजवा। पयो कृपाल दीर दुख भंजन, आपे सब थाटी, खिन में राख लियो जन अपना, गुरपुर बेड़ी काटी। मेरे मन गुर गोविंद सद त्याई है, सगल कलेश मिटै इस तन ते, मन चिंदिया फल पाई है रहाव। जी जंत जाके सब कीने, प्रभु ऊंचा अगम पारा, साध संग नानक नाम ते आया, मुख उजल पए दरबारा। सोरठ महला पंजवा।

पूत रथ संपत तन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्याई जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जो

टूटा अजामल पापी जग जाने निमक माइन सतारा नानक कहत चीत चिंता मन तैं पी उतरै पारा सोरठ महला नावा रानी कौनु पाऊ करे जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हरै रहाऊ कौन कर्म विद्या कहो कैसी तर्म कौन पुन कराई कौन नाम गुर जा कै सिमर भव सागर कौ तरई कल मैक नाम कृपा निद जाहि जपै गत पावे और धर्म ता कै समनाहन एह बिद बेद बतावै सुख दुख रहत सदा निरलिपी जाकू कहत गुसाई सो तुम ही मह बस निरंतर नानक दर्पण न्याय।

सगल जन्म परम ही परम खोयो, नै आस्थिर मत पाई, बिख्या सकत रहियो निसबासुर नै छूटी अदमाई। साध संग कबहू नहीं कीना, न कीर्त प्रभ गाई, जन नानक मैं नाहे को गुण, राख ले हो शरणाई। सोठ महला नौ।

कहि बिदरो को ताहि। रहाउ बीद पुराण सिमरत के मत सुन, निमख नाहिए बसावै। पर तन पर दार स्यों रचियो, बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कह भयो बाबरो, सूजत न कछ ज्ञानाउ। काटी पीतर बस्त निरंजन, ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो, दुर्मत सगल विनाशी। तब नानक चेतियो चिंता मन, काटी जम की फास।

जैसे सुपना बिनसत लगत ना बारु रहाउ। बारु पीत बनाई राच पाचु रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ये सोख माया की उर्जियो कांगवार। अजू समझ कछ बिगड़ियो नाहन पाजले नाम मुराद। कहु नानक निज मत साधन को पाख्यो तुहे पुकार। सोरठ महला नौवां। इह जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो। दुख मैं संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत संबंधी सगरे तन स्यों लागे। जावी निरतन देख्यो नर को सांग शाड़ सा पागे। कहो कहाँ या मन बौरे कौ इन स्यों नेहो लगायो। दीना ना सगल पै भंजन जसता को बिसराय। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सुदो बहुत जतन मैं किनो। नानक लाज बिरद की राको नाम तुहारो लीनो। सोरठ महला नावा। मन रे गहो न गोरे उपदेश कहाँ पयो जो मुंड मुंडायो। भगवो कीनो पेश रहाओ। साथ छाड़ कै झूठे लागियो जन्म कारथ खोयो। कर पर पांच उदर नज पोखेयो पस की न्याई सोयो। राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना। उर्ज रहियो बिखियन संग भौरा नाम रतन बिसराना। रहो चेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औद सिरानी। कहो नानक हर बिरद पछानो भूले सदा परानी। सोरठ महला नावा। जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह अर पै नहीं जाके। कंचन माटी माने रहाउ नैन दया नय उस्तत जाके। लोभ मोह अभिमाना अर्क सोग तेरे न्यारो नाहि मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्याग जग तेरे निरासा। काम क्रोध जी परसै नाहन ते घाट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जी नरको कीनी ते जोगत पछानी। नानक लीन पयो गोबिंद।

0: तृष्णा रात न पर कर जावा तृष्णा नाम बुझाई कर पितर कर गुरु दिखाया सहज रत्ते मन पाई
1: रतो बैरागी शब्द मन बेद्या मेरी माई अंतर ज्योत निरंतर वाणी

जगजोनी श्री श्रीलेख सहा मंग करम सुकर्म कराए आपे आपे पग दृढ़ा मंग मान मुख जुड़ ले पैमान गे आपे ज्ञान।

जगमोहनी पाई कर्म सब विकारी सुन पंडित कर्माकारी चित कर्म सुख उपजे पाई स्व आत्म तत् विचारी रहाव सासत वेद बके खड़ो भाई कर्म करो संसारी पाखंड मैल न चूके भाई अंतर मैल विकारी इन विद डूबी माकुरी भाई उड़ी सिर कै भारी दुर्मत कणी विगूती भाई दूजे भाई खुआई बिन सतगुरु नाम न पाई भाई बिन नामे परम न जाए सतगुरु सेवे तां सुख पाए भाई

है। ए वखर वपारी सो दृढ़ भाई, गुर शब्द करे विचार, धन वपारी नानका भाई, मेल करे वपार, सोरठ महला पहला, जिन्नी सतगुरु से व्यापारी, तिनके साथ तरे है, तिन्ना ठाकना पाई प्यारे, अमृत रसन हरे, बूढ़े भारे पै बिन प्यारे, तारे नदर करे, पी तू है सलाह ना प्यारे, पी तेरी सलाह बिन।

चलूल जीवन हर्षु बैराग्य भाई दर कर सच फूल पातालीय कास्तु भाई कर कर तू गुण ज्ञान गुरमुख गुरमिले गुरमिले सुख पाया भाई चुका मन भमान।

मुक्त भाए रिद से सब भक्ता चरणी लागी गुर के सह सुहाए मन मुखानो प्रतीत न आवे अंतर लोभ स्वभाव गुरमुख हरदे शब्द न भेद्यो हर नाम न लागा पाओ।

मेरे प्रियतम साया सा सुमाव एत जन्म हारे हरना चेते ओ पाई क्या मोदे से जाए किड़ी पौंदी मोहन पाई मिख्या नो लोभाए नाम सरमल है सुख वस भाई सदा सुख शांत शरीर है।

साधु संग मिलाया भाई सर्वे रह प्रभुरे जिन्ना प्रीतन लगे भाई सर नित नित मरदे चूरे।

0: जन का रूप रंग
1: हर नाम जपता परे न भंग
0: हर का नाम जन की बड़ियाई
1: हर के नाम जन शोभा पाई
0: हर का नाम जन को अपोग जोग
1: हर नाम जपत का स्नाई ब्योग
0: जन दाता हर नाम की सेवा
1: नानक पूजे हर हर देवा
0: हर हर जन के मालिक जीना
1: हर तन जन को आप रब दीना
0: हर हर जन के ओट स्थानी
1: हर प्रताप जन अबर न जानी
0: ओत पोत जन हर रस रते
1: सोन समाद नाम रसनाते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का भक्त प्रभु
0: हर की

0: अपनी गतमित जानू आपे
1: आपन संग आप रवराते
0: उम्री उस तक तुम ते हुए
1: नान कबर न जान कोई
0: सर्व तर्म में श्रेष्ठ तर्म
1: नारको नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
1: साथ संदर मत मलिया
0: सगल उद्दम में उद्दम पला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल बानी में अमृत बानी
1: हर को जासू लसन

0: ब्रह्मैया के गुण चेत प्राणी
1: कवन मूलते कवन निष्ठानी
0: किंतु सास वार सिगारिया
1: गर्भगन में जिने उबारे
0: वार विवस्था तुझे प्यारे दूध
1: पाजो बन भोजन सुख सूद
0: निर्द पया ऊपर साख सैन
1: मुख पयाओ बैठ को देन
0: एहो निर्गुण गुण कछु न बुझे
1: बक्ष ले तो नानक सीजे
0: प्रसाद तारू पर सुख बसे
1: सोत प्रात मीत बंटा संग्रह से
0: प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पाप कमला
0: प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगल सामग्री संग साथ बसा
0: दीने हस पाम कर नितर रसना
1: तिसे त्याग अवर संग्रचना
0: ऐसे दुख मुड़ंत व्यापे
1: नान काल ले प्रव्यापे
0: आदंत जो राखन हार
1: तिसे प्रीत न करे गवार
0: जाकी सेवा नव निध पावे
1: जो
0: ठाकुर सर सदा हजूरे
1: ताको अंदा जान दूरे
0: जाकी टहल पावे दरगा मान
1: तिसे बिचारे मुक्त जान
0: सदा सदा हो पुलन हार
1: नानक राखन हार अपार
0: रतन त्याग कौडी संग रचे
1: सार छोड़ चू संग मचे
0: जो छड़ना सो स्थिर कर माने
1: जो होवन सो दूर पराने
0: छोड़ जाए तिसका श्रम करे
1: संग सहाई तिस पर रे
0: चंदन लेपो तारे तोए
1: धरता प्रीत पसम संग होए
0: अंधकूप में पतित विकराल कटूत पशु की मानस जात
1: लोक चारा करे धनात
0: बाहर पे खांतर मल माया बाहर ज्ञान त्यान स्नान
1: अंतर व्यापे लोक स्वान
0: अंतर अगन बार तन स्वाहा
1: काल पाथर कैसे तरे था
0: जाके अंतर बसे प्रभाप
1: नानक तेजन से सुनात
0: अंधा कैसे मार्ग पावे
1: कर के लियो उड़ने पावे
0: महा बुझारत बुझे ढोरा
1: निश्चय ये तो समझे पूरा।

0: गोविंद भजन बिन ब्रिथे सब काम
1: धन
0: धन ते जन जे घट बस्यो हर नाम
1: नानक ताके बल बल जाओ
0: रहत अबर कसबर कमावत
1: माने प्रीत मुखो बंडलावत
0: जानन हार प्रभु परवीन
1: बार पेख न काहू पीन
0: अब रूप देसे आप न करे
1: आवत जावत जन में मरे
0: जिसके अंतर बसे निरंकार
1: जिसकी सीख करे संसार
0: जो तुम पाने तिन प्रभ जाता
1: नान कुंजन चन प्राता
0: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आपे माने
0: आपे आप करतन वीरा
1: किसे दूर जनावत किसे बिजावत मेरा
0: भाव स्यान सगल तेरे है
1: सबके जाने आत्म की रहत
0: जिस भावे तिस लई लड़ लाए।

0: हे प्रसाद शक्ति अमृत खाए,
1: तेजा कर को रख मन माए,
0: हे प्रसाद सुगंध तन लावे,
1: तिसको सिमरत परम रत पावे,
0: हे प्रसाद बसे सुख मंदर,
1: तिसे ध्याए सदा मन अंदर,
0: हे प्रसाद गृह संग सुख वसना,
1: आप पैर सिमरो तिस रसना,
0: हे प्रसाद रंग रस भोग,
1: नानक सदा ध्याए ध्यावन जोग,
0: हे प्रसाद पाठ पटंबर हटावे,
1: तिसे त्याग तब लुभावे,
0: हे प्रसाद सुख से सोई जाए,
1: मन आठ पैर ताका जस गावी जाए,
0: हे प्रसाद तू सबको माने
1: मुक्ता।

0: की जय।
1: प्रसाद असब हस्त सवारी
0: मानतेस प्रभ को कभू ना बिसारी।
1: प्रसाद बाग मिलक तना
0: राग प्रोय प्रभ अपने मना।
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: पूर्त बैठ सत इसे त्याई।
1: इसे त्याई जो एक लख
0: नानक तेरी रखे।
1: प्रसाद करे पुन।

0: प्रसाद बोले अमृत रसना,
1: ये प्रसाद सुख सहजे बसना,
0: ये प्रसाद हस्त कर चले,
1: ये प्रसाद संपूर्ण फले,
0: ये प्रसाद परम गत पावे,
1: ये प्रसाद सुख सहज समावे,
0: ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो,
1: वर प्रसाद नानक मन जागो,
0: प्रसाद तू प्रकट संसार,
1: तिस प्रभ को मूल न मनो विसार,
0: ये प्रसाद तेरा प्रताप,
1: प्रेम अनमूर्त ताको जाप,
0: ये प्रसाद तेरे कार्य पूरे,
1: तिसे जान मन सदा जूरे,
0: ये प्रसाद तू पावे साथ,
1: प्रेम अन मेरे तू पासे राज,
0: ये प्रसाद सब की गत होए,
1: नानक जाप जपे जप सोए,
0: आप जपे जपे सोना,
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ,
0: कर प्रभ कृपा ते होए प्रगास,
1: प्रभु दयाते कमल विकास,
0: प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए,
1: प्रभ दयाते मत उत्तम होए,
0: सर्व निधान प्रभ तेरी मैं,
1: आपको कछु न केन हूं मैं।

0: साध के संग मुख उज्जल होत
1: साध
0: के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा
1: साध संग सब होत मेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा भरने कौन प्राणी
1: साध की
0: साध के संग गोचर मिले
1: साध के संग सदा पर भूले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पंचा
0: साध संग होए सब की रेन
1: साध के संग मनोर बैन
0: साध के संग नकद तुम तावे
1: साध संग स्थित मन पावे
0: साध के संग माया ते पिन
1: साध संग नान प्रभ सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मीत
1: साधु के संग मां पुनीत
0: साध संग किछो नहीं पैर
1: साध के संग न लिंगा पैर
0: साध के संग नाही को मंदा
1: साध संग जाने परमानंद
0: साध के संग नाही होता आप
1: साध के संग तजे सब
0: आपी धाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बनाई
0: साध के संग न कब हुंतावे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बस तक गोचर लहे
1: साधु के संग अजर सहे।

0: साध के संग सब को लोदार है,
1: साध संग साध मीत कम निस्तार है,
0: साधु के संग सोतन पावे,
1: जिसमते सब को बसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध संग सो बसुर देवा,
0: साधु के संग पाप पलायन,
1: साध संग मत गुंडायन,
0: साध के संग सर्व थान गाम,
1: नान साध के संग सब जनम,
0: साध के संग नहीं कचका,
1: दर्शन पेट तो तने आले,
0: साध के संग कलू खतर है,
1: साध के संग नरक पर है,
0: साध के संग यहाँ हुआ सहेला,
1: साध संग पिछड़ धर मेला,
0: जो इच्छे सोई फल पावे,
1: साध के संग न बिथा जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिद बस है,
1: नान कुदरे साध सुरस है,
0: साध के संग सुनो हर नाम,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मन ते बिछरे,
1: साध संग सत पद निस्तर है,
0: साध के संग लगे परम मीठा,
1: साधु के संग कठर डीठा,
0: साध संग पै आज्ञाकारी,
1: साध संगत पै हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नान साध पेटे संजोग,
0: साध की

0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नारद ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
1: ब्रह्म ज्ञानी

0: कौन बखाने
1: ब्रह्मज्ञानी
0: का अंत न पार
1: ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्मज्ञानी सजीव निर्माता
0: ब्रह्मज्ञानी मुकद जुगत जी का दाता
1: ब्रह्मज्ञानी

0: कोट पे अभिमानी
1: कई कोट अंधज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर
1: कई कोट पेखा तमनी को
0: कई कोट पर दर्ब को हिरे
1: कई कोट पर दुख न करे
0: कई कोट माया श्रम आहे
1: कई कोट पर देश पर माहे।

0: गरबावे लश्कर मन ऊपर करे आस
1: करते
0: आप जाने बलवंत किसे न बदे आप अहंकारी
1: करे खुवारी
0: गोट प्रसाद जाकर मिटे अभिमान
1: सो जन नानक दर गए परवान
0: ओट कर्म करे हो तारे
1: श्रम पावे सगले विस्तारे
0: अनेक तपस्या करे अहंकार
1: नारक स्वर्ग फेरे अवतार
0: अनेक जतन कर आत्म नहीं।

0: जीवन मनोर बिरते सब का
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: बड़ भागी किसे प्राप्त होए
1: करन करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: करन करावन करने हार
0: इसके हाथ का विचार
1: जैसी दृष्ट करे।

0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सो बाते ही,
0: संत के हते को रखे न कोए,
1: संत के दुखन थान प्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संत संग निंदक बीते,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संत के दुखन काल जीव लवे,
0: संत के दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन जोन करमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सब कोशल है,
0: संत के दुखन ते जस संतन ते दुखन ते
1: संत के दुखन नीच निचाए,
0: संत दुखी का थाओ को नहीं,
1: संत पावे ताओ पीगत पाए,
0: संत का निंदक महातताई,
1: संत का निंदक हिंटे कना पाए।

0: करवाए।
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: जो पाप की धन करावे।
1: संत का दुखी छुटे अकेला,
0: जो ग्वार तिल खेत माए धोला।
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सब मिथ्या कहत।
1: कीर्त निंदा का तोर ही पया,
0: नानक जो तिस पावे सोई दिया।
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
0: संत के दुखी को दर के मिले सजाए।
1: संत का दुखी सदा सहकाइए,
0: संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए।
1: संत

गुर प्रसाद अपना आप सुधे संग हर हर जस कहत मन दिन कीर्तन केवल बख्यान एक ऊपर जन की आशा सार ब्रह्म की जिस मन भूख।

0: उत्तम कर्मान
1: जो किछ करे सो प्रभु के रंग
0: सदा बसे बसे हर संग
1: कैस पाए होवे सो होए
0: करने हार पिछाने सो होए
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना
0: जैसा सा तैसा सृष्टाना
1: जिस ते उपजे तिस माहि समाए
0: ओए सुख ज्ञान।

0: को अपना जीव
1: साथ की टूर करो स्नान
0: साधु पर जाइए कुर्बान
1: साथ सेवा बटपागी पाइये
0: साथ संघर कीर्तन गाइये
1: अनेक बिगनते साधु रखे
0: हर गुण गाय अमृत रखे
1: ओट गही संते दराया
0: सर्व सुख नानक तिन पाया
1: मृत्यु को जीवालन हार
0: भूखे को देवत आधार
1: सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे
0: पूर्व लिखे का लेना पाए
1: सब किस तिसकाओ करने जोग
0: जिसमें दूसर हुआ न होग
1: जप जन सदा सदा दिन रहनी
0: साथ ते ऊंच निर्मले करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल दिया
1: जाके मन गुर की प्रतीत
0: जाने आवे अपना चीत
1: भगत भगत सुनिए तहलोए
0: जाके हृदय को
1: सच करनी सचता की रह
0: सच हृदय
1: सच्ची दृष्ट सच्चा आकार
0: सच बाते सच्चा पासार
1: बार ब्रह्म दिन सच कर जाता
0: नानक सोजन सच समाता श्लोक
1: रूप न रेख न रंग किछ
0: त्रैगुण के प्रभिन्न
1: तिसे बुझाए नानका
0: जिस होवे सो प्रसन्न
1: अब नासी ब्रह्मन में राख
0: मान की तू प्री त्याग
1: इसते परे नहीं कछ कोए
0: सर्व निरंतर एक सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गई सजना
1: बार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा दान दयाल बख्शन
1: छात्र एक ही चरनी पाओ
0: नानक कै मन अनराओ
1: मनसा पूरन सरना जोग
0: कर पाया सोई योग
1: हरण परण जाका नेत्र फोर
0: किसका मंत्र न जाने
1: अनंत रूप मंगल सा जाके
0: सर्व थोक सुनिए करता
1: राज में राज योग में जोगी
0: तप में तपिसा ग्रस्त में भोगी
1: त्याई त्याई भक्ति सुख पाया
0: नानक तिस पुरता किने अंत न पाया
1: जाकी लीला की मित ना है
0: सगल देव हारे अबलाए
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल करोई अपने सूत
1: समत ज्ञान ध्यान जिंदे
0: जनदास नाम त्यावे से
1: गुण में जो को परमाए
0: जन्म मरे फिर आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान।

0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी,
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी,
0: ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत,
1: ठाकुर के सेवक की निर्मली,
0: ठाकुर का सेवक सद ठाकुर को सेवक जाने संग,
1: राखा सेवक नाम के रंग,
0: सेवक को प्रपालन हर,
1: सेवक की राखे रंग का,
0: ओ सेवक

0: सार्वलोक पूरन पतपाल
1: बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म
0: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: कौन पानी बैसंतर माहे
0: चार

0: संग रचना,
1: जिन जाता तिसकी ये रहत,
0: सात भजन साधु सब कहत,
1: जो जो होए सोई सुख माने,
0: कान करावन हार पर जाने,
1: अंतर बसे बाहर भी ओही,
0: नानक दर्शन देख सम होई,
1: आप सत किया सब सत,
0: इस प्राप्त सगली उत्पात।

नर से नार होए उतरे तू कही अत की आद पवानी मुक्त की परिया खांच बनी गुरमत राम नाम गहो मीता।

शिव शिव करता जो नर त्यावै बलद चढ़ा डोरू टमगावै काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा नमस्कार वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा नमस्कार है ताए हमारा।

त्रिग तिस जन्म जो धर्म विसारे, प्रातः काल सत्संग ना जावे, तनखा दार वे वड्डा कहावे।

सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहा भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल वे तिन वस्तु पेयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पेयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पहुंचै जिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित रख और धारो तम संसार चरण रग तरिया सब नानक ब्रह्म प्रसारो सलोक महला पंजवां तेरा किता जा तो नाई मैनो जोग कतोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पियोई तरस पिया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन जीवे हरिया तरस पिया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोय नाहे उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे भवजर बिखम असगाह गुरसाब दी पार पाहे जिन को लगी प्यास अमृत से खाए कल में एहो पुन गुण गोबिंद गाहे सब से नो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोय न जाए जे आवे तुद्याय श्लोक महला पंजवां अंतर गुरु आराधना जे वह जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना सरवणे सुरना गुर नाओ सतगुर सेती रतया दरगाह पाइय ठाहो कोह नानक कृपा करे जिसनु ए वस दे जग में उत्तम कांडिया बिरले कई के महला पंजवां अखे रखण हार आप वारियन गुर की पैरी पाए काज सुवारियन हुआ आप दयाल मनो नाम बसारियन साध जना के संग भवजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खन माहे बदारियन तिस साहब की टेक नानक मने माहे जिस अमृत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जित सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।